0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: अपने घर को इलेक्ट्रिक बनाने की सोच रहे हैं? ऐसा करना आपकी सोच से अधिक आसान हो सकता है. Easy Electric SEC आपको छूट और बचत का हिसाब लगाने, उपकरणों की तुलना करने और भरोसेमंद कारीगरों की खोज करने में सहायता देता है. ये सब कुछ एक ही स्थान पर. आप बिजली के बिलों पर प्रति वर्ष $2,000 से अधिक की बचत कर सकते हैं. शुरू करने के लिए तैयार हैं? easyelectricsec.com.au पर जाएं. बिजली के बिलों पर बचत करना SEC के साथ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है. विक्टोरिया सरकार मेलबर्न द्वारा प्राधिकृत.
3: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM.
4: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है. ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन. मूर्तियों और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें. बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Ek prarambhik balyavastha shikshak ya prashikshak ke roop mein aap bachchon ke jeevan ko aakar de sakte hain. आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं. अपने करियर को संवारें. अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं. विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत.
0: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM.
4: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट. यहाँ देखें चमकते खनिज, ट्रिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद. रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है. टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी कहानी होती है जिसे दुनिया शायद कभी जान ही नहीं पाती। कुछ लोग उसे समय के साथ भूलने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग वही कहानी शब्दों में ढालकर दूसरों के लिए एक रोशनी बना देते हैं। किसी आत्मकथा पुस्तक को लिखना केवल घटनाओं को कागज़ पर उतार देना नहीं होता, कई बार ये अपने अतीत के उन पन्नों को फिर से खोलने जैसा होता है जिन्हें बड़ी मुश्किल से दिल के संदूक में बंद किया गया था। उन यादों से दोबारा गुजरना, उन भावनाओं को फिर से महसूस करना, ये एक लेखक के लिए जितना कठिन हो सकता है उतना ही साहसिक भी। आज हमारे साथ एक ऐसी ही लेखिका हैं जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों, संघर्षों और आत्मखोज की यात्रा को एक पुस्तक का रूप दिया है। और ये पुस्तक दोस्तों केवल उनकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है बल्कि उन अनगिनत लोगों की आवाज़ भी है जो कभी ना कभी अपनी पहचान, अपने आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व से जुड़े सवालों का सामना करते हैं। दोस्तों, आज के गीतांजलि प्रोग्राम 92.3 FM में मैं दिल से स्वागत करता हूं हमारे मेहमान का। और जानते हैं कि इस किताब के पीछे की यात्रा की कैसी रही, क्या यह किताब केवल एक लिखने की प्रक्रिया थी या फिर अपने जीवन को नए नज़रिए से देखने और समझने की गहरी यात्रा भी। शी इज़ अ डायनेमिक एजुकेटर, क्रिएटिव आर्टिस्ट, सिंगल मदर, जिन्होंने ज़िंदगी के उलझे हुए धागों से सोना बनाने की कला में महारत हासिल की है। उनका 15 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग का है, वो भी लिंग्विस्टिक्स में, और बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने कई देशों में काम किया है। शी हैज़ इंस्पायर्ड काउंटलेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर वॉइस एंड एक्सेल एकेडमिकली। डॉक्टर अनामिका शर्मा जी, मेलबर्न के गीतांजलि रेडियो प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है। और साथ साथ मैं आपको अपने साथी जो जिनकी मधुर आवाज़ जो आप बार बार सुनते हैं और देख सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, राजश्री भी मेरे साथ हैं।
3: जी हाँ, नमस्ते दोस्तों। तो आज का ये सफ़र हमारा अनामिका जी आपके साथ शुरू हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद आपका बहुत बहुत राजश्री जी और विपिन जी, और नमस्कार आपको भी और आपके सब सुनने वाले श्रोताओं को भी।
3: जी बिल्कुल। और जैसे ये सफ़र अभी शुरुआत हो रही है, विंटर है और इतना बाहर अंधेरा हम पहुँचे हैं, तो बिल्कुल बाहर इस तरीके से अंधेरा छाया हुआ है, तो लेकिन एक गीत याद आ रहा है विपिन मुझे, जिसमें कि दो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि आहटों से अंधेरे चमकते रहे, रात आती रही रात जाती रही। तो क्यों ना ये खूबसूरत गीत से शुरुआत करें आज की इस शाम।
2: क्या बात है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 92.3 FM 3ZZZ रेडियो पर राजश्री और विपिन के साथ, और हमारे साथ हैं आज अनामिका हमारे साथ स्टूडियो में। तो हमारा फ़ोन नंबर है 9415 1923, और हम मेलबर्न में तो आप 03 ज़रूर लगाएं, 03-9415-1923।
1: तो दोस्तों, आज की खास बात यह है कि आज के प्रोग्राम में जो हमारी मेहमान आई हैं, ये वैसे तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनके साथ एक्टिंग में भी काफ़ी काम किया है, लेकिन उनकी जो स्पेशलाइजेशन है, जिसमें जो लिंग्विस्टिक्स में उनकी एक्सपर्टीज़ है, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं लिंग्विस्टिक्स के बारे में इतना, लेकिन जो भाषा का जो होता है एक अलग फ्लेवर होता है, और बड़ी कई भाषाओं में उनकी महारत है और कई देशों में भी उनका एक्सपीरियंस है, और जिस वजह से आज मुझे ज़्यादा और इच्छा हो रही है इनसे बात करने की और इनके बारे में और ज़्यादा जानने की है, वो इसलिए है कि मैंने अभी इनकी पुस्तक खरीदी जिसका कि नाम है चिजल माय वे आउट, जो कि 6 फरवरी 2026 को अमेज़ॉन पर अवेलेबल हुई थी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो अपनी किताब के लिए। मैंने पढ़ के देखी, बहुत ही दिल को छूने वाली और बहुत ही इतनी अच्छी और ऐसी भाषा जो कि ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने बिल्कुल दिल निचोड़ के रख दिया हो, जैसे उसमें कुछ ऐसा लगा कुछ। अब पता नहीं क्या उसके सीक्रेट हैं कुछ, तो वो तो धीरे धीरे पता लगेगा। एक कॉल भी आ रही है, मैं ले सकता हूँ अगर आप बात करिए जरा सा?
0: जी हाँ बिल्कुल। तो अनामिका जी, कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, मैंने अभी पढ़ी तो नहीं है आपकी किताब, बट मैं बिल्कुल लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ, क्योंकि विपिन ने काफ़ी इसके बारे में बताया है, और आज आपसे बात करने के बाद और खुलेंगे सारे इसके सीक्रेट्स, तो विल बी इंटरेस्टिंग। तो आप ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, दिस इज़ वॉट विपिन टोल्ड मी अबाउट इट। तो क्या हमें कॉल आ रही है विपिन? आप कॉल,
1: आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं?
2: जी
1: आप अपना नाम बताएंगे क्या?
2: मंजुला, मैं ये फरमाइश करनी चाहती हूँ फिल्म हमराश के मिले गगन से चले धरती का प्यार मिले।
1: धन्यवाद
0: मंजुला जी, आपका हम कोशिश करेंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हमराश,
1: धन्यवाद, बहुत बहुत।
2: ओके,
1: चलिए, हम क्या बात कर रहे थे?
0: हम किताब के बारे में पहले बात कर रहे थे।
3: और मैं आपका धन्यवाद देना चाह रही थी विपिन जी, कि आपने इतने सुंदर शब्दों में इस किताब के बारे में बोला।
1: नहीं, बहुत ही, मैं शब्द तो बहुत कम हैं, लेकिन जो मैंने जितना पढ़ के देखा उसमें, एक तो बड़े अच्छे शब्दों, इस तरीके से आपने कहानी को पिरोया है गानों के साथ, और वो एक थीम को लेकर हर चैप्टर में जिस तरह से हिंदी फिल्मों के गानों के साथ किया है उसको, कि जो ऐसा लगता है कि आपने एक, जैसे एक पेंटर होता है ना, पेंटर एक पिक्चर ड्रॉ करता है, वैसे ही आपने, मुझे हर चीज़ में ऐसा लगा कि मैं खुद आपके साथ उस जर्नी में चल रहा हूँ, कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, कभी यहाँ पर हूँ, कभी वहाँ जॉर्डन में पहुँच गया हूँ, या किसी का क्या स्ट्रगल होती है लाइफ का। तो मैं पहला सवाल आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो आपकी किताब है, एक व्यक्तिगत अनुभव से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये ना एक पहचान, आइडेंटिटी के खो जाने जैसे विषय तक पहुँचती है, तो आपने सिस्टम के भीतर पहचान का जो आइडेंटिटी इरोजन जैसे कह सकते हैं, उसके बारे में कहा है, तो हमारे श्रोताओं को इसके कुछ सरल शब्दों में बता सकते हैं कि क्या है ये आइडेंटिटी इरोजन?
3: जी विपिन जी, हर एक के जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं। मेरी कहानी कोई अकेली ऐसी कहानी नहीं है जो लोगों को यू नो लाइक परेशान करती है ज़िंदगी में। सबके ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जिस वजह ने मेरे को प्रेरित किया इसको एक कहानी में लिखने के लिए, एक नॉवल में लिखने के लिए, वो यही बात थी जिस पे आप अभी सवाल उठा रहे हैं कि आइडेंटिटी इरोजन। बिकॉज जब जब मैं इस बात को किसी को बताती थी और उनका जब मुझे रिएक्शन आता था, तो ये आता था कि उसके बाद मेरे को उनकी बातों से ये लगता था कि मैंने, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट just a story, just a marriage, it is about my identity which was getting eroded. वो जो पहचान जा रही थी, तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक व्यक्ति के पूरे जीवन की, और जीवन से संबंधित सवाल मुझे बहुत प्रेरित करते हैं और इसीलिए मुझे लगा कि ये कहानी मुझे बाहर निकाल के लानी चाहिए और इसीलिए मैंने इस कहानी का नाम चिसल माय वे आउट रखा बिकॉज़ जैसे चिसलिंग में मूर्तिकार जो होता है वो छेनी और हथौड़ों से इस्तेमाल करता है तो जीवन हथौड़े तो मुझे मार ही रहा था मुझे लगा कि मुझे इसमें बीच में छेनी लगा के उसको एक सुंदर आकार दे देना चाहिए और वो मैं दे पाई।
1: मुझे बहुत अच्छा टाइटल लगा आपका और मुझे आपके टाइटल से एक अपनी ही लिखी हुई दो लाइनें याद आ रही हैं। एक्चुअली मैंने अपने लिए लिखी थी कि मुझको तराशने में कोई कमी ना बख्शना, मुझको तराशने में कोई कमी ना बख्शना, चाहता हूँ मैं हर मुश्किल इम्तहान से गुजरना।
3: क्या बात है बस वही बात है जिसको मैं आगे लेके गई।
1: आपकी चिजल वाली बात से मुझे बिल्कुल आपका टाइटल इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे।
3: धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आई एम श्योर कि जितने लोग पढ़ेंगे दे विल समहाउ कहीं ना कहीं इससे रिलेट ज़रूर कर पाएंगे क्योंकि ये कहानी जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एक शादी की कहानी नहीं है, ये एक पढ़ी लिखी कॉरपोरेट में काम करने वाली महिला की भी कहानी हो सकती है, मनुष्य की आदमी की भी कहानी हो सकती है जो कि एंड्योरेंस को अपना मान के चल रहा है कि जितना मैं एंड्योर करूँगा, जितना मैं इस बात को सहन करूँगा, पेशेंट रहूँगा, हार्ड वर्किंग रहूँगा, बेंडिंग बैकवर्ड रहूँगा, उतना आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये कहानी, ये बात संभल जाएगी, ये चैलेंज सॉल्व हो जाएगा। तो उन सब की कहानी मुझे लगता है कि ये बन सकती है या कहीं ना कहीं वो इसको अपने आप में देख सकते हैं।
1: अच्छा, आपकी कहानी पढ़ के कई लोगों के मन में एक सवाल उठता है वैसे, जो मुझे लगता है कि आप इतने, आप डॉक्टरेट आपने किया हुआ है लिंग्विस्टिक्स में, आपने इंटरनेशनल स्कॉलर रही हैं, सब कुछ है, कि एक सवाल उठता है कि समझदार और सक्षम लोग कठिन परिस्थितियों में इतने लंबे समय तक क्यों रहते हैं? आपके अनुसार उन्हें क्या रोकता है?
3: कई बार उनकी समझदारी ही उन्हें रोकती है बिकॉज उन्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, दे आर स्मार्ट इंटेलिजेंट पीपल और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इसको सॉल्व कर लेंगे। और यही मेरा सवाल है कि कब आप समझेंगे कि ये कहानी जो है, ये बेंडिंग बैकवर्ड्स जो है वो अब आपकी बैक ब्रेक करने के लिए रेडी है। तो व्हेन डू यू हैव टू स्टॉप बेंडिंग बैकवर्ड्स? एंड्योरेंस जो है, किसी चीज़ को सहनशीलता, जो कि हम जनरली कहते हैं कि एक बहुत अच्छी आदत है सहनशीलता का होना या पेशेंस का होना, या दूसरे को समझ के चलना या दूसरे के लिए जगह बना के चलना, ये सारी सुंदर बातें हैं। ये आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सुंदर हैं, ये आपके घर में भी सुंदर हैं, ये आपके दोस्तों में भी सुंदर हैं, ये बहुत सुंदर बातें हैं। इनसे एक समाज चलता है, उस पर निर्धारित रहता है, लेकिन कहाँ पे जाके ये इनफ इज इनफ, आई विल नॉट टेक इट एनी मोर और आई विल स्टैंड फॉर माई सेल्फ हेयर ऑन पे जाके बात करते हैं। हम लोग कभी भी इस बारे में बात नहीं करते हैं। हम लोग पैसिव एग्रेशन की बात करते हैं, एग्रेशन की बात करते हैं, हम लोग इन सब क्वालिटीज़ को वर्च्यू मान के अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, उसने कर दिया कोई बात नहीं, तू तो बड़ा है ना, तू तो समझदार है ना, तू चल आगे, नहीं तू तो मेरी प्यारी बेटी है, तुझे थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी। ये नहीं सिखाते कि कब प्यारी बेटी ना बन के तुम्हें अपना तलवार अपने हाथ में लेनी है और डरना नहीं है। जिस हिम्मत से तुमको ये मन में बात आई है कि ये मेरा अस्तित्व ख़त्म हो गया, आई एम अ स्ट्रेंजर इन द मिरर नाउ, ये वो रोमा है ही नहीं जो जॉर्डन आई थी, जब ये बात समझ में आने लगती है तब आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर मैं ये कहानी लिख के आगे बढ़ाना चाह रही हूँ।
1: तो बहुत अच्छा है, रोमा का किरदार है
0: जी। तो ऑन ए पर्सनल नोट मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगी, ये तो ऐसी वो कौन सी बात थी जिसने आपको ये एहसास कराया कि अब बदलाव का समय आ गया है, कांट बेंड एनी मोर बैकवर्ड्स?
3: जी ये बहुत ही, आपने बहुत ही सुंदर सवाल किया है क्योंकि ये सवाल मेरे लिए भी बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत सारी लाइफ कोचिंग क्लासेस करने के बाद, समझने के बाद, काउंसलिंग करने के बाद ये बात समझ में आई कि एक औरत के तौर पर, एक लवर के तौर पर, एक शादी होकर एक औरत जो ससुराल चली जाती है उसके तौर पर मैं सब कुछ समर्पित करने को तैयार थी। मैं पेशेंटली हर चीज़ को लेकर आगे चलने को तैयार थी, पूरी समस्याओं से जूझकर स्माइल करने को, आगे बढ़ने को तैयार थी। लेकिन जब मेरा बच्चा मेरे सामने आया और जब मैंने ये रियलाइज़ मुझे हुआ कुछ कारणों की वजह से जो किताब में लिखे भी हैं कहानी के रूप में, तो जब ये सामने आई बात तब दिखाई दिया कि ये मुझसे क्या सीख रहा है। जाने अनजाने बच्चे वही करते हैं जो उनके माँ बाप के सामने उनको उनको दिखता है, क्योंकि वही उनके उनके रोल मॉडल्स होते हैं। और वो जो सच्चाई थी और वो जो वेकिंग यू नो लाइक अवेकनिंग का मोमेंट था कि व्हाट एम आई टीचिंग माई चाइल्ड हेयर, व्हाट इज़ ही गोना बिकम। और मेरे लिए ये बात बहुत अहम थी कि बच्चा जो होता है वो सिर्फ एक दो एक शादी का प्रोडक्ट बच्चा नहीं होता है, वो हमारा एक गिफ्ट होता है, एक उपहार होता है इस समाज को जिसमें हम रहते हैं। हम एक बच्चे को इतने सालों तक परवरिश करके बड़ा करते हैं और उसे समाज में उतार देते हैं, तो वो बच्चा जो समाज में उतारने के लिए मैं इतने सालों का अथक परिश्रम कर रही हूँ, वो मुझसे क्या सीख के जा रहा है। जो मैं कह रही हूँ वो एक अलग बात है और जो मैं उसको दिखा रही हूँ अपने गलत बिहेवियर से वो एक अलग बात है। वो जो रियलिटी थी, दैट हिट मी टू स्टैंड अप एंड टेक अ स्ट्रॉन्ग एक्शन।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि सहनशीलता और आत्मसम्मान के बीच में जो एक संतुलन होता है, जो बैलेंस बनाना होता है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जज कर पाना कि कब करना है, जैसे आपने बताया कि आपका ट्रिपिंग पॉइंट एक बच्चे का आ गया, कि अल्टीमेटली जो आप बोलते हैं वो मैटर नहीं करता है, कि आप जो कंडक्ट है आपका वही बच्चा देख के करता है। कि अभी पिछले हफ्ते हमने अभी नाटक वगैरह भी जब करते थे तो हम यही बात करते हैं कि जो प्यार है क्या बेसिकली, ना कितना सिंपल सा शब्द है, आपने इतना एक्सपीरियंस किया है हर चीज़ को या कुछ है, कि वो इंसान की आदतों में, उनकी परवाह में, उस चीज़ में दिखता है हर चीज़ की। मेरे प्ले में जो मैंने लिखा था पिछले हफ्ते, जो सुकून था उसमें भी यही था कि प्यार आदतों में, इंसान की परवाह में, उसकी गुस्से में, हर चीज़ में नज़र आता है वो।
3: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: तो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये एहसास, आपने तो खैर बताया ही है बात का, कि जब आपके बच्चे के साथ जो है,
3: और जब बच्चा इस बात को देख के वापस बोलने लगा मुझे कि मम्मी इफ ही इज गिविंग मी अ स्लैप और टू इट डजंट मैटर, आई एम हिज सन, बट ही इज मिसबिहेविंग विद यू, लेट्स गो बैक टू इंडिया नाउ। अ 9-year-old और अ 10-year-old चाइल्ड कमिंग अप विद दिस ऑब्जर्वेशन वॉज अ स्लैप टू माई एडल्ट फेस, दैट आई कॉन्ट सी दिस, बट दिस चाइल्ड कैन सी दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट।
1: So
3: those were small little things here and there which made me realize कि I need to do something drastic. अपने आप में ही बहुत drastic बात थी, because मैं एक ब्राह्मण परिवार की बच्ची हूँ, रही हूँ। एक ब्राह्मण परिवार की बच्ची एक मुसलमान से शादी करे, और सिर्फ एक मुसलमान से नहीं, एक अरब मुसलमान से शादी करे, और फिर अरब चली जाए, और फिर वहाँ जाके उसको महसूस हो कि ये सही नहीं है तो उठ के आ जाए। तो एक के बाद एक जो था, मैं पहाड़ पे पहाड़ चढ़ रही थी, और मज़े से चढ़ रही थी, पता ही नहीं चला। लेकिन जब पता चला, जब बच्चे को देखा, तब लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रही है। और फिर जो था, जो जिस साहस से मैंने वो काम किया था, उसी साहस से मैंने फिर अपने आप को वापस खड़ा किया।
0: और आपको क्या लगता है कि कितना डिफ़िकल्ट है, ये बहुत इंस्पायरिंग है कि आप इतना ओपनली इसके बारे में बात कर पा, आपने किताब भी लिख दी और इसके बारे में शुरू में आपने बात भी की होगी, कहीं ना कहीं वहाँ जाके आपको इंस्पिरेशन मिला कि अब मुझे इस पर किताब भी लिखनी है। एंड आई एम श्योर आप कई वुमेन जो इसमें से गुजर रही होंगी इस वक्त, उन्हें इंस्पिरेशन मिलेगा कि वी कैन ऑल्सो कम आउट, वी कैन टॉक अबाउट इट, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ स्टिल इन आर सोसाइटी।
3: एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, और हमारी सोसाइटी में नहीं, मैंने तो वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा है, मैंने जापान में देखा है, इट इज़ अक्रॉस ह्यूमन सोसाइटीज़, बिकॉज ह्यूमैनिटी गोज़ बियॉन्ड द कंट्री दैट यू आर इन। क्योंकि आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं, सेल्फ लव की बात जो है वो बहुत भयंकर है। जब और हमें सेल्फ लव किसी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है, सेल्फ लव के नाम पे हमें शॉपिंग करना सिखाया जाता है, हमें हमें कपड़े पहनना, हमें नेल्स बनाना, हमें बाल बनाना, हमें ये सब सिखाया जाता है, लेकिन सेल्फ लव पे के नाम पर हमें अपनी गलतियाँ देख कर उनको सुधारना और उनको मानना नहीं सिखाया जाता।
0: सेल्फ लव आजकल एक टोकनिस्टिक वर्ड बन गया है, मतलब दिस इज माय ओपिनियन। सोशल मीडिया के चलते सेल्फीज डाल के लड़कियां सेल्फ लव करके, बट हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली अंडरस्टैंड
3: और सेल्फ लव का मतलब है चिसल कर करके अपने आप को हथौड़ा मार मार के एक शक्ल एक आकार देनी है जो सुंदर लगे, क्योंकि ईश्वर ने जो ये आपको शरीर दिया है, आपको जो जीवन दिया है, उसको सुधारने का काम है आपका, उसको ख़राब करने का काम। और यही वजह है कि मैंने ये इतनी पर्सनल अंदरूनी कहानी जो थी वो बाहर निकालने की का डिसीजन लिया, क्योंकि मुझे लगा कि ये मुझे भी लगा। और एक्चुअली जिन लोगों के साथ मैं बात भी करती थी, मोनैश में मैं जब काम कर रही थी तो वहाँ पे वो जो इंटरनेशनल विमेंस डे होता है उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी ये कहानी सुनाई, एंड द होल हॉल फुल ऑफ सो मैनी पीपल वर जस्ट यूनानिमसली सेइंग कि आप कोई कहानी लिखिए, इस पर नॉवल लिखिए, दिस नीड्स टू कम आउट, मोर पीपल नीड टू हेयर इट। तो उससे मुझे थोड़ा सा साहस हुआ, अदरवाइज इट वॉज डन एंड डस्टेड फॉर मी। हुआ, मैंने कुछ किया, मैंने एक स्टेप लिया, अब मैं ठीक हूँ, बात ख़त्म हो गई। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, इस बात को आगे लेकर आओ, दुनिया के सामने लाओ, तो मुझे हिम्मत बनी।
1: वैसे मैं श्रोताओं को ये भी बता देता हूँ कि ये पुस्तक जो है चिजल माय वे आउट, ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, और इसमें हार्ड बाउंड भी है, किंडल वर्जन भी है, और सॉफ्ट पेपर पैक वर्जन भी है। तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन भी रहेगी, वैसे मैंने अभी रिकमेंडेशन डालनी भी है, उसमें अपने कमेंट्स डालने हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही इंस्पायरिंग किताब लगी। और पढ़ने में भी आपको लगेगा कि ऐसा नहीं कि कोई वो जैसे जार्गन यूज़ किए हुए हैं या कुछ, बड़ा सिंपल लैंग्वेज है जो कि आपको दिल को बहुत आसानी से छू जाएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अगर ये हमारे साथ हो या हमारे घर में किसी के साथ हो तो क्या होगा, कैसे होता है, तो बड़ा रिलेट करने वाली चीज़ है बहुत ज़्यादा। बल्कि मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस किताब को पढ़ने के बाद ये जो पाठक जो हैं अपने जीवन में क्या लेकर जाएंगे, अगर आपको उनको कोई संदेश देना हो इस किताब के माध्यम से।
3: मेरा सबसे बड़ा संदेश अगर मैं कुछ देना चाहती हूँ लोगों को, वो ये है कि जल्द से जल्द अपने मन के आईने में झांकें, ज़्यादा समय ना लगाएं। मैंने बहुत समय लगाया, क्योंकि जैसे कि आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि मैंने क्यों समय लगा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, मैं ये भी सॉल्व करके निकल जाऊँगी। मगर आपसे मेरा बस यही कहना होगा कि आप ये देखिए और ये सवाल उठाइए मन में कि अरे इसने इतना टाइम क्यों लिया, और उस सवाल को अपनी तरफ डायरेक्ट करके देखिए कि कहीं मैं तो नहीं ऐसी सिचुएशन में हूँ। वो सिचुएशन आपके वर्क प्लेस में हो सकती है, वो सिचुएशन आपके घर में हो सकती है, वो सिचुएशन आपके दोस्तों में हो सकती है, वो सिचुएशन आपके और आपके बीच में हो सकती है। जो आप बनना चाहते हैं वो आप नहीं बन रहे हैं क्योंकि आप बाकी कुछ अपने जीवन में देना चाह रहे हैं। इट कैन बी एनी वेयर, बट जस्ट टर्न अराउंड, लुक इन वर्ड्स, लुक एट योर सेल्फ। दैट इज़ द लेसन आई वुड लाइक टू गिव यू, एंड एक्ट अर्लियर देन आई डिड।
0: बहुत अच्छी, बहुत सही बात कही आपने। तो अनामिका जी, दिस इज़ योर फर्स्ट बुक, किससे पहले आपने और किताबें लिखी हैं?
3: इससे पहले मैंने एकेडमिकली काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं,
0: फिक्शन
3: मेरा ये पहला है।
0: फिक्शन कह लीजिए, लाइफ एक्सपीरियंस कीजिए, लिव्ड एक्सपीरियंस कह लीजिए।
3: एकेडमिक मैंने जापान में लिखी है, जापानीज बिजनेसमैन के लिए, और बाकी का 3-4 किताबें हैं।
1: थोड़ा सा माहौल को हल्का कर लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, तो पहली बात करी है हमने, पहली बुक की जो भी, तो पहले प्यार की बात कर लेते हैं थोड़ी।
1: थोड़ा सा माहौल हल्का हो जाएगा तो मैं आगे चर्चा करूँगा, क्योंकि मैंने किताब पढ़ी है और काफ़ी बातें मुझे करने को।
3: जी जी जरूर।

0: आप मुझे राष्ट्री ही कह सकते हैं अभी भी. वेलकम बैक दोस्तों. हमारा फ़ोन नंबर है, अगर आप हमें कॉल करना चाहें तो 03-9415-1923. और आप सुन रहे हैं विपिन और राष्ट्री को अनामिका जी के साथ में. और काफ़ी हैवी टॉपिक चल रहा था इसलिए हमने थोड़ा सा लाइट कर दिया गाने के साथ में, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक अगेन. तो मुझे लगता है ना कि हम सभी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी दीवार को चिजल कर ही रहे हैं. एंड अननोइंगली हर कोई, हर इंसान ये कर रहा है, हम शायद रियलाइज़ नहीं करते. एंड जिस दिन हम रियलाइज़ करते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि तब आप कहानी अपनी बताने के लिए भी तैयार हो जाते हैं. तो मैं ये समझती हूँ कि राइटिंग इज़ काइंड ऑफ थेरेपी. आप अपनी थॉट्स लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो हील भी करते जाता है. तो ये राइटिंग प्रोसेस, जब आपने ये किताब लिखी तो डिड यू फील कि आपकी हीलिंग हुई उसमें, लाइक उसके बारे में आप कुछ बताएंगी?
1: जी ज़रूर. इसके साथ तो कुछ मज़ेदार कहानियाँ भी हैं. पहली बात तो ये कि जब मैं इसको लिखने लगी तो ये मैंने एक साल के अंदर, ये कहानी कोविड का जब टाइम था, जब एकदम बंद था सब कुछ, उस समय मैंने लिखी. कोविड का लिख लेने के बाद से अब जाके मैंने उसको पब्लिश कराया है, क्योंकि लिखने के टाइम में इतना कथारसिस हो गया था, इतना रिलैक्सेशन हो गया था, इतना जिसे कह सकते हैं आप कि डकार आ गई थी, कि इट वाज ओवर, इट वाज फिनिश्ड. लिख लिया, बात निकल गई, मन शांत हो गया, रो भी ली, हंस भी ली, अपने पे भी हंस ली, दुनिया पे भी हंस ली, सब कुछ हो गया, फिर रख लिया. उसके बाद अब जाके पब्लिश किया. लेकिन कहानी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे को हीलिंग कहाँ हुई, क्योंकि जॉर्डन के अंदर मेरे साथ, जिसे आजकल हम लोग गैस लाइटिंग बोलते हैं, वो हो रहा था. वेयर एवरीथिंग, आई वॉज गेटिंग गैस लिट एट एवरी पॉइंट बाय दैट पर्सन, एंड दैट वॉज इरोडिंग माई कॉन्फिडेंस, दैट वॉज टेकिंग अवे माई पर्सनैलिटी, माई आइडेंटिटी फ्रॉम मी. तो उसके बाद जब मैं आगे बीच की कहानी को मैं साइड करती हूँ, वो आप पढ़िएगा, लेकिन जब मैं जापान पहुँची तो वहाँ पे मेरे को बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिली. और वो जो मेरा जो प्यार का जो कप था वो खाली जो हुआ हुआ था, इट स्टार्टेड, फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्टेड फिलिंग अप एंड देन इट स्टार्टेड ओवरफ्लोइंग, एंड दैट ओवरफ्लो वॉज वेरी कथार्टिक फॉर मी. एंड देन देयर वॉज दिस वन इवेंट विच आई मस्ट tell you, Rajshree and Vipin, that which was very, very cathartic for me. It was a moment, but it brought so much of peace in me. And that was, I was sitting, मैं एक balcony में बैठी हुई, अपने घर की balcony में बैठी हुई थी, और नीचे cherry blossom के पेड़ थे.
2: हाँ, वहाँ तो बहुत होते हैं,
1: जापान में बहुत खूबसूरत होते हैं. तो मार्च का महीना रहा होगा, वो cherry blossom के पेड़ वहाँ पर था. एक particular पेड़ था जिसके ऊपर एक चिड़िया जो थी वो फुदक रही थी. अब हो क्या रहा था कि वो चिड़िया जो थी वो फुदकती थी, और वो जो चेरी ब्लॉसम का पेड़ जो होता है, वो फूल जो होता है, वो बड़ा डेंटी होता है, बहुत हल्का होता है, उसके पत्ते गिर जाते थे. अच्छा, पत्ते नीचे गिर गए, या नीचे जो है एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था, माली होगा या जो भी था, वो पत्तों को साफ कर देता. अब ये कहानी चले जा रही है, चिड़िया फुदके जा रही है, पत्ते गिरे जा रहे हैं, वो साफ करे जा रहा है, और मैं बैठी हुई अपनी बालकनी से देख रही हूँ. इट देन डॉन्ड अपॉन मी कि अरे यार, सारे लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं. पक्षी का काम है उछल कूद करना, वो कर रहा है. फूल का काम है कि हिले तो, हवा आए तो गिर जाना, पत्ते गिर जाना, और आदमी का काम है कि वो उसको साफ करेगा. तो सब अपने अपने नेचर के हिसाब से अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो मुझे किससे गुस्सा होना है, क्या गुस्सा होना है? जिसने जो कार्य किया उसने अपनी नेचर के हिसाब से किया. सब ऐसा लगा जैसे शांति आ गई, जैसे वो उबलते हुए दूध के ऊपर आप हल्की सी बौछार कर दो पानी की, तो कैसे शांत होके बैठ जाता है. बस मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा मस्तिष्क शांत हो गया.
2: बहुत अच्छी बात बताई आपने,
0: profound.
2: कि नेचर में ना सॉल्यूशन होता है हर चीज का.
1: बिल्कुल,
2: हम देख नहीं पाते, या हम इतने भाग रहे होते हैं कि हम, वो कहते हैं ना, थम के रुक के थोड़ा देखें तो पता लगता है कि सब चीज़ों के सॉल्यूशन हमारे सामने दिख रहे होते हैं नेचर में, सब चीज़ों के.
1: बिल्कुल बिल्कुल. और इसमें मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि ये सब तभी दिखाई देने शुरू होते हैं जब हम इस बात को ऑनेस्टली माने कि हमें एक सॉल्यूशन चाहिए. हमें कुछ ढूंढना है, हम कुछ, अगर हम यही नहीं मानते हैं अपने ईगो में या अपने ह्यूब्रिस में या अपने अनअवेयरनेस में कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, सब सही है. तो वो मेरा सवाल जो आपने पहले पूछा था कि आप रीडर से क्या ले जाने को, क्या चाहते हैं कि रीडर लेके जाए, वो ये कि आप अपनी तरफ देखना ज़रूर शुरू करिए. प्लीज़ देखिए कि क्या आप अपने बेस्ट वर्जन हैं इस समय कि नहीं, और नहीं है तो क्या अटक रहा है, और क्या अटक रहा है तो उसको कैसे हटा सकते हैं.
2: बहुत अच्छी बात करी, बहुत अच्छी. अपना बेस्ट वर्जन बनिए.
0: तो फिजिकल वुंड्स तो सभी को दिखते हैं, एंड आई थिंक सोसाइटी उसको अवेयरनेस भी होती है उसके बारे में, देख के आपको सपोर्ट भी करेगी जो भी है. बट आई थिंक इमोशनल वुंड्स जो हैं अभी भी पहचानने में सोसाइटी टाइम तो लगाती है. एंड आपको आई थिंक एक इंसान भी ऐसा मिल जाए जो उसको समझे तो उसमें आपको करेज आता है कि ठीक है, आई कैन शेयर माई स्टोरी. बट आई थिंक अभी भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी वी हैव टू गो लॉन्ग वे कि इस तरीके की चीज़ों को सपोर्ट कर. इसके बारे में आप क्या सोचती हैं कि
2: वैसे इससे पहले कि ये जवाब दें, मैंने किताब में इनको पढ़ा है और उन्होंने इस इशू पर एड्रेस भी किया है.
0: That's good then.
2: तो इसलिए मैं
1: बताइए,
2: मैं सीक्रेट नहीं मैं चाहता हूँ कि हमारे जो श्रोता हैं किताब पढ़ें वैसे. लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात है किताब से एक ये भी लगी कि इन्होंने कहीं पर भी आपने किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया है, आपने अपना देखा, आपने यू ट्राइड टू गिव बेस्ट, आपने कोशिश करी जैसे कि रिलेशनशिप्स को सेव करने की, बिल्ड करने की. लेकिन वही बात है कि कहाँ पर उसका अंत कितना है, कि अगर आप वो खुद को ही खो जाएंगे दूसरों को बनाने में तो फिर तो आइडेंटिटी ख़त्म हो गई इंसान की. खैर आप जवाब दीजिए, मैं तो बीच में इंटरफेयर कर दिया.
1: नहीं राजश्री जी, मतलब आपको लगातार अपनी तरफ देखते रहना पड़ेगा. वो सबसे बड़ी बात तो इसमें ये आती है कि आपको सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि आप ईश्वर का ही रूप हैं, उन्हीं का प्रारूप हैं, उन्हीं का स्वरूप हैं. और क्या आप उस लेवल तक अपने आप को ले जा पा रहे हैं कि नहीं, और नहीं ले जा पा रहे हैं तो उसकी तरफ देखिए. और अगर उसमें छोटे पड़ रहे हैं, गलतियाँ हो रही हैं, तो मानिए. क्या फ़र्क पड़ता है, गलती हो गई तो मान लो यार, गलती हो गई हो गई. 10 लोग मिलेंगे जो आपको गाली भी दे सकते हैं, जो आपको बेवकूफ़ भी कह सकते हैं, जो आपको ठीक है फाइन, स्टूपिड भी तो इंसान ही होता है, ठीक है. तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ईगो में ना लाकर अपने आप को प्यार से देखो. लव योर सेल्फ, लव लव, एंड बाय लव आई डोंट मीन जस्ट लव योर सेल्फ, बाय लव आई मीन अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना भी लव होता है, अपनी कमियां देखना भी लव होता है. तो उसको देखिए, आप ढूंढ पाएंगे कि कहाँ पे हर्ट हो रहा है. अपने दिल से जब आप की आवाज़ सुनेंगे तो दिल में ही तो आपका आपका ईश्वर, आपका अल्लाह, आपका आपका देवता बैठा है. वो बताएगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है बेटी बेटा, कुछ तो हो रहा है, और वहाँ से निकलेगी आगे बात. फिर एक कड़ी जो है वो दूसरी कड़ी को पकड़ती जाएगी.
0: वाकई में सबसे डिफ़िकल्ट बात तो यही होती है, क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करना अपने आप में.
1: बिल्कुल.
0: तो
1: और वही आई थिंक होना चाहिए, मगर हम इतने ज़्यादा बाहर मुखी हैं कि हम देखते ही नहीं हैं.
0: अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो क्रिटिकली रिफ्लेक्ट आपको करना ही पड़ेगा.
1: और ग्रोथ होनी ही चाहिए, क्यों ना हो ग्रोथ.
0: बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली.
2: अच्छा, मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछना, मतलब व्यक्तिगत तो नहीं कहना चाहिए
1: जी, जी.
2: कि कभी आपको इस किताब को लिखने में ऐसा लगा कि यार नहीं लिखते इसको, ये थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है या कुछ.
1: हाँ हाँ, बहुत बार. इसीलिए तो अब तक लिखी नहीं थी, इतनी पुरानी बात हो गई, अब तो मैं डायनासोर की उम्र की हो गई हूँ. अभी तक इसीलिए नहीं लिखी थी क्योंकि यही लगता था. लेकिन फिर जब एक बार मन बना लिया कि हाँ अब मैं इस किताब को लेकर आ रही हूँ बाहर, तब मैंने एक अपनी दोस्त है मेरी, इंडिया में है, उसको मैंने एक काम असाइन किया. उसका काम ये था कि वो हर हफ्ते मुझसे ये पूछती थी कि अच्छा फिर बताओ क्या हुआ, क्योंकि मुझे कहानियाँ बोलना बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक टू, आई एम अ स्टोरी टेलर. तो उसका काम बस यही था कि वो मुझसे बच्चे की तरह बैठ के पूछे अच्छा फिर बताओ क्या हुआ, और फिर मैं करने लग जाती थी, और वो जो था वो मैं रिकॉर्ड करती थी, वॉइस मेमो बनाती थी, और उसको फिर लिखती थी. तो इस ढंग से मैंने मदद ली कि मुझे कोई रस्ते पर रखे, क्योंकि क्या होता है कि आप बहुत बार बहुत ज़ोर से अगर रो पड़ते हो तो वो बात उसके बाद ख़त्म हो जाती है, यू नो, ड्राइज अप. तो वो मेरे साथ होता था बहुत बार, मगर फिर उसका काम ये था कि वो वापस आती थी अगले हफ्ते और फिर पूछती थी अच्छा बता क्या हुआ.
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
1: तो इस ढंग से धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए.
0: तो जब आपने लिखा होगा तो आपने कई कहानियाँ आ रही होंगी, क्योंकि लाइफ इतनी बड़ी होती, इतनी कहानियाँ होती, इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बट जब आप किताब लिखने लगते, जब आपने लिखी होगी, उस कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल होना पड़ा होगा और कुछ चीज़ें ड्रॉप करनी पड़ी होंगी कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये है वो, जो कहते हैं ना किलिंग योर बेबीज राइटर जो करता है, उसमें आपको कितना डिफ़िकल्ट लगा वो प्रोसेस कि नहीं मुझे सारा कुछ चाहिए, बट कुछ तो कहीं, तो आपने वो प्रोसेस कैसा रहा आपके लिए?
1: राजश्री, उसमें मेरे को मेरी पीएचडी ने बहुत मदद की, क्योंकि पीएचडी में हमें, मेरी पीएचडी अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में है, भाषा विज्ञान में है, अप्लाइड भाषा विज्ञान में, और उसमें किसी भी पीएचडी में आपका काम क्या होता है कि आप एक बड़े टॉपिक को पकड़कर उसको नैरो डाउन करते हो किसी एक एंगल पर लाकर, और फिर उस एक एंगल में डीप डाइव करते हो। तो वो जो पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड पैटर्न ऑफ राइटिंग था, उसने मेरे को इस किताब में भी मदद की कि सारी कहानियों को ना उठा के वो कहानी उठाई जाए जो कि मैं आगे ले जा सकूँ, कि वहाँ से वहाँ कैसे पहुँची, फिर वहाँ से वहाँ कैसे पहुँची, और फिर वहाँ से वहाँ पहुँच के कहाँ पहुँची। तो उसने मेरी बहुत मदद करी, तो पढ़ाई कहीं तो काम आई।
0: बहुत बढ़िया।
2: लिंग्विस्टिक्स तो वैसे भी बड़ा रेयर एरिया है, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं सुना कि किसी ने लिंग्विस्टिक्स में इतना काम किया हो, पीएचडी करी हो, या इतना सब कुछ है। तो आपको वैसे, जैसे आपने बताया कि लिखने में आपको इससे काफ़ी सहायता मिली, सब कुछ हुआ।
1: मुझे भाषाओं से प्रेम है, थोड़ी बहुत अरबी आती है, थोड़ी बहुत जापानी आती है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी तो आती ही है, तो भाषाओं से प्यार है थोड़ा।
0: तो आप इसके बारे में कुछ बताइए कि अगर किसी ने किसी को लिखना है तो लिंग्विस्टिकली आपको स्ट्रांग होना, कि आपकी स्टोरी स्ट्रांग होनी चाहिए? अगर सोचिए स्टोरी किसी के पास बहुत ही अच्छी है, बट वो परहैप्स उन आपके आपके जैसा शायद अगर उनके पास स्किल ना हो कि कैसी लिखनी है, कहाँ लेके जाना है, ऐसे लोगों के लिए क्या आपकी एडवाइस होगी?
1: सबसे पहली एडवाइस तो मेरी ये होगी कि आपको अपना वाई बहुत क्लियर होना चाहिए, आप क्यों लिखना चाह रहे हो, क्या मोटिव क्या है आपका, व्हाट इज़ योर ड्राइविंग फोर्स। बिकॉज अगर ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, भाषा अपने आप आएगी, और भाषा जो है वो बाद में भी परिष्कृत हो सकती है, आपने हल्के भाषा में लिख दिया उसको दोबारा हो सकता है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन आप क्यों लिखना चाह रहे हो और इसका क्या देना चाह रहे हो, क्यों इससे आप चाहते क्या हो, वो सारी बातें अगर क्लियर हो जाएंगी तो बढ़ जाएगी बात आगे।
2: अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जब आप किताब लिख रहे थे तो क्या आपने किताब लिखने के प्रोसेस के बीच में क्या रोमा में कोई नई रोमा फाइंड करी, या अपने आप को नया पाया कुछ?
1: हाँ, हर घड़ी अपने आप को नया पाया। सबसे बड़ी बात है कि इतनी हिम्मत जुटा पाना ही एक नई बात थी, कि इस टाइप की बातें जिनमें, जैसे कि कई लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई आप इतना, अगर अब्यूज़ था रिलेशनशिप में तो आपने छोड़ा क्यों नहीं, इतना टाइम क्यों रखे, 7 साल का प्यार बिफोर मैरिज, 10 साल की शादी आफ्टर गेटिंग मैरिड, वाई? तो वही जो चेंजेस हैं वो नए थे, और जब जब जैसे जैसे मैं लिखती जा, देखिए जीवन आप जी लेते हो, निकल जाते हो, पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उसको ब्लैक एंड वाइट में, काले सफ़ेद कागज़ पे, काले इंक से जब आप स्याही से लिख के सामने रखते हो तो समझ में आता है कि अरे यार ये था, अरे यार वैसा था, तो पल पल एक नया व्यक्तित्व उभरा।
2: तो ये रोमा जो है, इसका आपके, अगर मैं जितना, मैंने जितना पढ़ा है उसमें, कि अगर मान लीजिए कि इसमें बच्चे की भूमिका नहीं होती ज़्यादा, तो क्या रोमा की स्टोरी भी फिर भी यही होती, या डिसीजन मेकिंग ऐसी ही होती?
1: आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है, क्योंकि जब रोमा वहाँ पे परेशान हो रही थी, उसको लग रहा था कि उसका जूता उसे चोट मार रहा है, उसको काट रहा है, उसको घाव कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि अब इसको करना क्या है, तो मैंने रोमा ने अलग अलग लोगों से बात की। उसने ऐसी लेडीज से भी बात की जो कि इंडिया से आई थी और बिल्कुल बदल गई, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे उनके हो चुके हैं, वो गाँव में रह रहे हैं, सब कुछ बदल गई। ऐसों से भी मैं मिली जिन्होंने बैलेंस ढूंढ लिया, ऐसों से भी मैं मिली जिन्होंने कम्प्लीटली चेंज कर लिया, तो हर एक वैरायटी के लोगों से मैं मिली। और जो आपने बात पूछी कि बच्चा अगर नहीं होता तो क्या ये कहानी होती, मुझे लगता है कि ये कहानी होती, क्योंकि थोड़ी देर से ज़्यादा और ज़्यादा ले लेती, लेकिन जूता तो काट ही रहा था, तो कहीं ना कहीं बच्चा तो वजह बन गई, सॉलिड वजह बन गई, नहीं तो थोड़ा और टाइम लेती, मगर होती तो सही, क्योंकि दुखी तो हो ही रही थी रोमा, और अस्तित्व की जो जो पहचान की जो कि जो ठेस थी कि ये मुझे नहीं मिल रहा है, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा। और जैसे कि आप वहाँ पे जो टाइटल्स मैंने दिए हैं चैप्टर्स में, उसमें देखेंगे गानों का जो बदलाव हो रहा है,
2: बहुत अच्छे, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पढ़ के।
1: उसमें सारे बॉलीवुड के गाने हैं और वो गाने आपको वो यही बात बताएंगे कि कैसे जो है वो बदलती जा रही थी। तो फ़र्क आता, मतलब बच्चा नहीं होता तो थोड़ा और देर से आता शायद।
2: बिल्कुल, इनकी जब मैंने किताब पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो जैसे स्टार्टिंग होती है वो तेरे मेरे मिलन की रहना, और फिर आगे धीरे धीरे वो ये बता दें मुझे ज़िंदगी।
1: जी जी जी, तो वो सारे सवाल जो थे वो नई नई रोमाएं भी खोल रहे थे और थे भी वहाँ पे। तो बच्चा होता या नहीं होता शायद बदलती बात, बाकी तो पता नहीं।
0: वैसे बुक्स की तो ये सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि बुक्स और सॉन्ग्स की भी मैं कहूँगी फॉर दैट मैटर, कि हर रीडर हर लिसनर उसमें अपनी कहानी ढूंढ ही लेता है।
1: हाँ,
2: बहुत अच्छी बात कही कि हर एक को जब पढ़ते हैं ना, मुझे कई बार लगता है यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे में उतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कुछ करने की। हर एक को होता ना कि
1: यही यही मैसेज मैं देना चाह रही हूँ कि आप ढूंढिए अपनी वाली, आपकी कहाँ पे फंसी हुई है बात, और नहीं फंसी है तो एंजॉय, उत्सव मनाइए।
2: बिल्कुल हाँ,
1: तो उत्सव मनाने का समय, और नहीं तो ढूंढिए निकालिए।
2: बिल्कुल। अच्छा वैसे
1: उत्सव से
2: तो चलते हैं, मैं वैसे बता रहा हूँ बात का कि आज अभी हमारा मेलबर्न में काफ़ी सारे क्रिएटिव इवेंट्स हो रही हैं, आप खुद भी नाटकों में से जुड़ी रही हैं, मेरे साथ भी मुझे भी मौका मिला है आपके साथ काम करने का कई बार।
1: जी जी,
2: तो
1: बहुत मज़ा भी आया था।
2: हाँ बिल्कुल, और आगे भी हम देखेंगे कुछ करते हैं कुछ। आप इतना अच्छा लिखती हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, तो कोई ज़रूर आपको बड़ा अच्छा इसी विषय पर भी कुछ नाटक किया जा सकता है, इतना संवेदनशील चीज़ है।
1: Definitely.
2: और ख़ासतौर से गैस लाइटिंग का जैसे आपने इशू बताया, इस पर ख़ासतौर से भारतीय पृष्ठभूमि पर कोई बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग पर फिल्में नहीं बनी हुई हैं, ऑथेंटिक जिसको बोलते हैं, वरना वो वैसे ही होते हैं कि मार पिटाई वाली दिखा देंगे या कुछ होगा, जो कि

0: तो मेलबर्न में जितने हो रहे हैं नाटक वगैरह, उसमें अभी पिछले दो हफ्ते बैक टू बैक हुआ है, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते नाट्य दर्पण ने अपने स्थापना के 10 वर्ष पूरे किए हैं और उसमें 2 नाटक श्रृंखला करी हैं। आज अभी हम देख कर आए हैं थोड़ी देर पहले आपके साथ जो नाटक देखा,
1: जी हाँ,
0: हमीदा बाई की हवेली, बहुत ही सुंदर नाटक, वो नम्रता जी का निर्देशित जी। और बहुत ही सुंदर कास्ट और क्रू, सारा बहुत बढ़िया सेट, सब कुछ बहुत ही सुंदर प्ले था।
1: और पिछले हफ्ते भी जो देखा वो भी बहुत, आपने जो छोटी छोटी कहानियाँ पीरो के, जो एक जिंदगी के और प्यार के बारे में, मतलब शादी का सिलेबस बहुत ही अप्रोप्रिएट टॉपिक था और
0: वो थोड़ा सा लाइट था, जनरली
1: लाइट था, बट इट वाज रियली गुड। और स्पेशली लास्ट स्टोरी जो आपने विपिन आपने जो प्रेजेंट करी थी वो काफी इमोशनल थी।
0: चलिए धन्यवाद बहुत बहुत, आपको
2: उसका मंचन दोबारा करेंगे,
0: बिल्कुल दोबारा करते हैं। वो वैसे ओल्ड कपल की स्टोरी थी,
2: तो मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं डायनासोर हूँ।
0: चलिए आपके साथ करेंगे कभी मौका लगा, आप मौका देंगे तो।
2: जी जी जरूर, मूड अब हल्का हो गया, कोई बढ़िया सा गाना लगाएं।
0: चलिए आपका मूड हल्का कर देते हैं और फर्दर।

0: वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप हमको कॉल करना चाहते हैं तो आप हमको कॉल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, हमारा नंबर है 03-9415-1923। हालांकि टाइम तो बिल्कुल विपिन भाग रहा है।
0: वैसे हम उनका गाना नहीं शायद लगा पाए, लेकिन अगर नहीं लगा पाए तो हम
1: अगली बार हम प्रॉमिस करते हैं आपका गाना लगाएंगे।
0: हाँ मंजुला जी, आपके गाना हमें याद है, वैसे हम कोशिश करेंगे अगली बार लगाने का। अगर आज बड़ा जरूरी डिस्कशन चल रहा है, जो कि हमारे श्रोताओं को बड़ा सुनने में आया है कि बड़ा अच्छा लगता है, कि और ख़ासतौर से इसमें बहुत चीज़ों के जो सोल्यूशन जो होते हैं ना, हमें खुद ही ढूंढने होते हैं, जैसे कि अनामिका जी ने बताया है। तो अगर अनामिका जी, अगर कोई श्रोता आज ऐसी स्थिति में जहां उसे लग रहा है कि उसकी पहचान या आत्मविश्वास धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देंगे, या जो इस स्थिति में है या कुछ है?
2: मेरी सबसे पहली सलाह जो मैंने अपने लिए लगाई थी वो यही है कि इस बात को आप रिकग्नाइज़ कीजिए। जब तक कि आप बीमारी को मानेंगे नहीं कि एक बीमारी है, तब तक आप किसी डॉक्टर को ढूंढने निकलेंगी ही नहीं या निकलेंगे ही नहीं। और जिन बातों की हम बातें कर रहे हैं, जैसे कि गैस लाइटिंग है, जैसे कि सहनशीलता इस हद तक हो जाना कि वो आपको दुख देने लगे, या जैसे कि आपका अपना जो अंतरात्मा है वो ख़त्म हो रही है अपने जीवन के अंदर, ये बातें ऐसी हैं जो कि सामने दिखती नहीं है। तो जब तक आप मेहनत करके अपने दिल से, अपने हृदय से अपने आप को

0: नहीं देखेंगी तब तक आप इसकी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढेंगी कभी भी, साल दर साल चलते जाएंगे। इसलिए प्लीज़ दुनिया तो जिए, जी खूब मज़े से जिए, लेकिन अपनी तरफ भी देखिए।
1: पर मेरा सवाल थोड़ा सा अलग भी था इसमें, क्योंकि हर इंसान किताब लिखकर तो अपना हीलिंग नहीं कर सकता, तो कहाँ पर उसको जैसे करना है?
0: इसमें विपिन जी मेरा यही कहना है कि सबसे पहले आप देखिए तो सही कि आपको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जबरदस्ती थोड़ी ना ढूंढनी है प्रॉब्लम। नहीं है प्रॉब्लम या है प्रॉब्लम, इस सवाल को आप अपने मन में जरूर करिए। एक बार आप ये करेंगे तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। जरूरी नहीं है कि कहानी लिखो। मैंने कहानी तो बहुत बाद में लिखी है, पहले तो मैंने रास्ता ये उठाया कि कुछ किया इस बारे में, उठी, अपने बच्चे को उठाया, चली गई। वहाँ पे जहाँ गई वहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, तो वहाँ से उठ के दूसरी जगह गई, एकदम अचानक अलग देश में चली गई। तो एक्शन तो अपने आप आएगा, लेकिन देखिए अपनी तरफ पहले। दैट इज़ माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी।
2: तो विपिन, टाइम तो देखो अभी बिल्कुल एंड पे पहुँच रहा है।
1: वैसे मैं अगर इससे पहले कि ख़त्म करें आप, मैं एक ये श्रोताओं जिन्होंने कई लोगों ने किताब पूरी पढ़ने का अवसर शायद ना मिला हो या कुछ हो, अगर आपको, मैंने तो अभी मेरे थोड़ी सी रह गई अभी लास्ट की किताब, पर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि आपने बिना किसी को ब्लेम किए हुए आपने अपनी बात को कहा और आपने बताया कि मैंने ऐसा कब क्यों कैसे कहा किया या कुछ। ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब आप ब्लेम करने लगते हैं तो आप सॉल्यूशन की से हट जाते हैं इंसान
0: जी।
1: तो अगर आपको ये बताना हो लोगों को एक मिनट में कि आपकी किताब का सार क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
0: एक मिनट क्यों, मैं एक सेकंड दिल की सुनो। जब दिल की पहले सुनी थी तो शादी करी थी, और शादी करने के बाद जब दिल की सुनी की बात गड़बड़ है तो फिर सुनी अपने दिल की और माना कि बात गड़बड़ है, और जब बात गड़बड़ है इतनी हो गई तो फिर दिल की सुनी कि नहीं अब इस पे कुछ करना है। तो आपकी समस्याएं, आपका लाइफ, आपका सब कुछ आपके दिल से शुरू होता है। आप अपने दिल की सुनिए और फिर चलिए।
1: और बिफोर आई फिनिश, क्योंकि मैं आपके माता जी से भी मिला हूँ और बड़े इंस्पायर्ड हूँ उनसे, बहुत अच्छा लगा था मुझे, उनसे भी आपको इसमें कुछ बहुत सहायता मिली होगी, गाइडेंस इसमें?
0: मेरी मदर से मेरे को बहुत सहायता मिली, हालांकि एक भारतीय माँ होने के नाते उन्होंने कभी मुझे उत्साहित नहीं किया इस बारे में, प्रोत्साहित नहीं किया इस बारे में कि उठो और निकल कर आ जाओ। उन्होंने जब तक मैं वहाँ थी तब तक यही कहा कि नहीं नहीं इसको संभालो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन जब मैंने नहीं किया और मैं उठ के अपने बच्चे को लेकर वापस भारत चली गई, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया में थी, 10 दिन के अंदर अंदर मेरे पास वापस आई और मेरे पास खड़ी हुई, और मनसा वाचा कर्मणा हर तरीके से उन्होंने मेरी सपोर्ट करी। और मैं आज वो यहाँ नहीं है इस धरती पर, और मैं उनकी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर माँ नहीं होती मेरी तो शायद मेरे लिए ये कहानी और भी मुश्किल हो गई होती।
1: बहुत सुंदर
2: जी। हाँ, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सफ़र। तो सफ़र की जो बात चल रही है, तो विपिन मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी कि हाल ही में मैं अपनी गर्ल गैंग के साथ एक और ट्रिप फिनिश करके वापस आई हूँ। और एक हमारा रिचुअल है, हम लोग ये सारी लाइफ की बातें कर रहे हैं उससे मुझे एक लिव्ड एक्सपीरियंस एक अपना शेयर करना चाहूँगी कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं ना, तो हमारे सूटकेस में हम जस्ट इन केस करके कई सारी चीज़ें हम पैक करते हैं कि क्या पता जस्ट इन केस कभी डिनर पे गए और कुछ अच्छा पहनने का मन हुआ, तो जस्ट इन केस अगर मौसम बदल गया तो कुछ मुझे नया जैकेट भी रख लूँ कि सेम जैकेट रोज थोड़ी ना पहनूंगी। जस्ट इन केस एक जोक है कि हमारा एक जस्ट इन केस बैग होता है जो कि खुलता ही नहीं, जो यूज़ भी नहीं होता, वो जाता है और वापस आ जाता है। आई थिंक लेकिन इस बार ट्रिप पर ना मैंने एक बात रियलाइज़ की कि वो जो जस्ट इन केस बैग पहले हुआ करता था 10 साल पहले, वो ना छोटा हो गया है। तो एक चीज़ को ऐसा लगा जैसे जैसे हम ग्रो होते जा रहे हैं, आई थिंक हमें वो अब समझ में आने लगा कि लाइफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि यू डोंट नीड एवरी टाइम जस्ट इन केस। आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाते हो कि चल ठीक है, ये जो चीज़ है इसमें हम एडजस्ट कर लेंगे, वो वाली बात अब आ गई है। तो ग्रोथ के साथ साथ में ना ये महसूस हम करने लगे कि जो भी जहाँ खुशी मिलती है वहाँ पे कर लो यार, डजेंट मैटर, अगर वो चीज़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है मिस करने की, जो कि पहले नहीं होता था।
0: बहुत सुंदर।
2: तो

0: तो जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि कितने सारे जस्ट इन केस बैग्स हम बैगेजेस हम अपने साथ लेकर चलते हैं, जिसके बारे में आपने बात कही कि आपने भी कई सारे बैगेजेस छोड़े बिकॉज दे वर नॉट नीडेड एंड दे वर नॉट राइट.
1: बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं.
2: बड़ी अच्छी बात है कि बैगेज भी छोड़ते जाना चाहिए जो बोझ बन जाए.
1: ये सबक तो मुझे तब मिला था जब मैं इंडिया से जॉर्डन गई थी सारा सामान लेके, जैसे कि एक आम लड़की जाती है शादी करके, और जब मैं वहां से आई तो सिर्फ अपनी डिग्रियां और अपना बेटा, इसके अलावा कुछ नहीं लेकर आई, सब वहां पे छूट गया.
2: बस वही मैटर करता है,
1: बस वो दो चीजें,
2: ट्रेवल लाइट, चाहे जिंदगी हो चाहे सफर हो, कोई भी सफर
0: हल्का होना चाहिए, है ना, क्योंकि कभी सामान लेकर चलने वाले जिंदगी के लम्हों से ज्यादा गहरा जो महसूस कर पाते हैं हमारे लम्हे ही होते हैं जो हम एक साथ बिताते हैं. तो आइए इसी एहसास के साथ ये गाना सुनते हुए चलते हैं.
2: चलिए नामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का, बहुत ही अच्छा लगा बात करके. मुझे ख्याल है कि श्रोताओं को भी बड़ी प्रेरणा ली होगी इससे. और किताब लेना मत भूलिएगा, अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी किताब है.
1: चिसल माय वे आउट, प्लीज़
0: मैं आज ही ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ अमेज़ॉन पे.
1: जी, और अगर पढ़ें तो फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कि कैसा लगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री जी.
0: थैंक यू नमिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस से. अब पढ़ के भी मजा आएगा. थैंक यू. चलिए, गुड नाइट दोस्तों.